0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: उम्रा की सआदत हासिल करने वाले मुतवज्जे हों, उम्रे का सफर अख्तियार करने से पहले यकीन दहानी कर लें कि आपके सामान में नशा आवर अशिया ना हो, आपके पास किसी अजनबी का सामान ना हो, रिश्तेदारों, अजीजों और दोस्तों की जानिब से दिए गए तहाइफ की जांच पड़ताल करनी हो, आपके सामान में ममनू अशिया शामिल ना हो। याद रखें, सऊदी अरब में मुनशियात ले जाने की सजा सिर्फ मौत है। एहतियात करें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए।
3: जबरे ड्रामा गुरु
4: जिंदगी आवारगी
3: ओए मोहब्बत खाना मारा ड्रामे ब्रेक दराजा पखपल कोरनी चैनल रेडियो अमन 88.4 करक बांधे ख्वागो ख्वागो प्रोग्राम नावरू
4: उससे फासला
3: रेडियो अमन नेटवर्क जीवन रंग अमन।

हाउ अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम. बिल्कुल सुबह दोपहर तारीख तकरीबन एक हफ्ते बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं मॉर्निंग प्रोग्राम के साथ. सो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूं कि आप सब हेयर ऑफिस होंगे. जी बिल्कुल, मॉर्निंग प्रोग्राम के साथ सुबह दोपहर तारीख एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं.

So today is the 28th June, the day is a Sunday, and the year is 2026. So guys, सबसे पहले चलते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब. प्रोग्राम में शामिल करते हैं आज के न्यूज़पेपर के टॉप स्टोरीज और देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन से टॉप स्टोरीज शामिल हैं. सो बिल्कुल चलते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब. शामिल करते हैं प्रोग्राम में आज के न्यूज़पेपर के टॉप स्टोरीज.

जिन सरी थी आज की खबर की टॉप स्टोरीज। चलते हैं प्रोग्राम के स्टार्ट में एक पैट्रियोटिक सॉन्ग की जाने। सुनते हैं प्रोग्राम के स्टार्ट में ये पैट्रियोटिक सॉन्ग। सो एंजॉय कर लेते हैं ये पैट्रियोटिक सॉन्ग। जी बिल्कुल।

इस ड्रेटिक सॉन्ग के बाद वापस जल्दी आते हैं। सो कहीं जाएगा मत। स्टे विद अस।

Welcome back and good morning to all of you once again. This is me, Super Duper Tariq, and now you're listening a morning to program. So guys, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब हेयर ऑफिस होंगे, ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे. अच्छा जी, सबसे पहले प्रोग्राम में शेयर करते हैं आज का सवाल. और सवाल वही सवाल है. कौन सा सवाल है? वही सवाल जो मुहर्रम से पहले मैंने प्रोग्राम में पूछा था, लेकिन किसी ने भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया. तो आज वही सवाल मैंने दोबारा पूछना है. तो बिल्कुल सवाल ये है कि वो क्या है, जैसे सब दो कहते हैं और कहते भी हैं, कहने वाली चीज है. वो क्या है जिसे सब दो कहते हैं और कहते भी हैं? सवाल वही सवाल है. देखते हैं कि आज इस मॉर्निंग प्रोग्राम में कौन सवाल का सही जवाब देता है. सवाल अगेन रिपीट करता चलूं, सवाल ये है कि वो क्या है जिसे सब दो कहते हैं और कहते भी हैं. तो ये एक कहने वाली चीज है. सो बिल्कुल देखते हैं कि कौन सवाल का सही जवाब देता है. और इसके लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैसेज के थ्रू आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. और मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान है. अपने मोबाइल के राइट या क्रिएट ऑप्शन में जा सकते हैं, जहां पे आप मैसेज लिखते हैं वहां पे जाके कैपिटल वर्ड में टाइप कीजिए RAK यानी रेडियो अमन करक. RAK टाइप करने के बाद स्पेस अपना नाम, अपने इलाके का नाम और लास्ट में इस सवाल का जवाब क्यों क्या है जिसको सब दो कहते हैं और ये कहने वाली चीज है और कहती भी है. इस सवाल का जवाब भी आप लिख सकते हैं और फिर ये मैसेज आप सेंड कर सकते हैं 8583 पर यानी 85 83 पर.

सो बिल्कुल चलते हैं सबसे पहले एक सॉन्ग की जानिब। प्रोग्राम में एक सॉन्ग शामिल करने जा रहा हूँ और बहुत जबरदस्त सॉन्ग है, पाकिस्तानी ड्रामा सॉन्ग है। सो बिल्कुल एंजॉय कर लेते हैं ये सॉन्ग और इस सॉन्ग के बाद वापस जल्दी आते हैं। बिल्कुल आप लोग टाइप कर सकते हैं मैसेज और मैसेज में सवाल का जवाब भी आप लिख सकते हैं और फिर ये मैसेज आप सेंड कर सकते हैं 8583 पर यानी 85 83 पर। सो चलते सॉन्ग की जानिब, एंजॉय कर लेते हैं ये सॉन्ग।

So guys, जिंदगी में कामयाब वही लोग होते हैं जो ख्वाब देखने के साथ साथ उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं और टाइम की कदर करते हैं। वो अपने गोल पर फोकस रखते हैं, अपनी वीकनेस को दूर करते हैं

0: और हर नए दिन को एक नए चांस के तौर पर कबूल करते हैं। ऐसे लोगों के लिए किस्मत भी नए रास्ते खोलती है, क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत करने वालों की कोशिश को कभी जाया नहीं करता।
1: उसे किस्मत का फैसला समझकर हम आगे बढ़ जाते हैं।
2: सुन लिया?

प्रोग्राम में तमाम सुनने वालों को एक बार फिर खुशामदीद। मुझे कहते हैं सुबह जबर तारिक और इस वक्त आप सुन रहे हैं मॉर्निंग का प्रोग्राम। अच्छा मुझे ये भी बताता चलो कि गुज़श्ता रात पिशावर और गिरदनवा में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। सूबाई दरल हुकूमत पिशावर और गिरदनवा में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं जिससे इमारतें लर्ज उठे। सो लोग घरों से बाहर निकले और कल मतवैबा का विरोध करने लगे। जलजले के झटके इस्लामाबाद और रावलपिंडी मासेरा शांगला सवात और चकवाल समेत हाइबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जल्दी की शिदत 5.9 और मरकज अफगानिस्तान का हिंदुकश रीजन रिकॉर्ड किया गया। जलजले की जेर जमीन गहराई 178 किलोमीटर बताई जा रही है। ताहम फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है। पेशावर समेत सूबे की दीगर अजला दीर बाला चतराल और चारसदा और मानसेरा में भी जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। लोग घर छोड़कर मैदानों की तरफ दौड़ने लगे। मानसेरा के सियाहती मकामात नारान कागान और बालाकोट में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं और वहां मौजूद लोगों में खौफ हिरास फैल गया। जिला मर्दान रुस्तम सवात मलकन हंगो नौशेरा और मजफात में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं।

शो बिल्कुल सुन एंजॉय कीजिएगा और साथ आपके मैसेज प्रोग्राम में शामिल करते हैं। टाइम कम है, जस्ट 11 मिनट बाकी हैं। अच्छा जी, फर्स्ट मैसेज ऑफ द शो, किसने मैसेज किया है, कहां से किया है? एक मैसेज आए हैं लेकिन ये टेक्स्ट मिसिंग है, पता नहीं किसने मैसेज किया है, कहां से किया है।

जी नेक्स्ट मैसेज प्रोग्राम में शामिल करते हैं सोना मोना तारिक सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? प्लीज सर मेरे लिए ये वाला सॉन्ग प्ले करें, बहुत उदास हूँ। अच्छा आयशा फ्रॉम करक, चले थैंक यू सो मच आयशा, आपने ज्वाइन किया बहुत शुक्रिया। और मैं ट्राई करता हूँ आपने सॉन्ग की फरमाइश की है, थैंक यू सो मच फॉर योर फर्स्ट मैसेज। जी नेक्स्ट मैसेज शामिल करते हैं, इट्स मी तरह सलाम एंड गुड गुड मॉर्निंग तारिक खान, क्या हाल चाल है? शो लाजवाब है आपकी तरह। वो कहते हैं कि मुस्कुराती बहुत तो हों, हमने कहीं यही तो राज का गम छुपाई है, छुपाने का। अच्छा जी।

0: विश यू बेस्ट ऑफ लक। चले थैंक यू सो मच तरहान, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जी नेक्स्ट मैसेज प्रोग्राम में शामिल करते हैं और अच्छा जी नेक्स्ट मैसेज
1: मैं कुछ ना चाहूं रे।
0: और सलाम एंड सुबह खैर तारिक भाई मनाहिल गुल जवाब
1: रे तेरे बिना मैं कुछ ना चाहूं
0: ना ना ना नेवर। थैंक यू सो मच, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मनाहिल आपने ज्वाइन किया लेकिन आपका जवाब है गलत। चले थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया। ओ माय गॉड, पता नहीं किसने जवाब दिया है लेकिन आपने नाम नहीं लिखा है इसके साथ। अच्छा जी एक जवाब आया है लेकिन आपका नाम नहीं है इस मैसेज में और सवाल का जवाब है बिल्कुल सही जवाब लेकिन पता नहीं किसने मैसेज किया है कहां से मैसेज किया है और आपका जवाब बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सही जवाब।

माय स्वीट बाई माय बर्फी शो. अच्छा ओके पापा की परी द ओनली दिल रुबाहट से भाई रिपीट का सवाल. अच्छा जी सवाल तो मैंने दो तीन दफा रिपीट किया है प्रोग्राम में. सवाल यह है कि वो क्या है जिसे सब दो कहते हैं और कहते भी हैं.

और जी नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई हिदायत अल्लाह करक्षी, सवाल का जवाब है ना ना ना नेवर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हिदायत अल्लाह करक्षी। और जी नेक्स्ट दिलरुबा ने फिर से मैसेज किया है, कह रही है कि हाँ बिल्कुल जी थैंक यू।

बड़ी हसरत है जाना इस दिन की, वो कहीं मैं हूँ मैं कहूँ पहचाना नहीं। अच्छा जी, ये किसने मैसेज किया है? आयशा ने मैसेज किया है करक से, दिल बहुत खफा है, याला मेरी हाल पर रहम करे। अच्छा चले, थैंक यू सो मच आयशा, आपने ज्वाइन किया और बिल्कुल हमारी दुआ आपके साथ है। थैंक यू आपने ज्वाइन किया। और जी नेक्स्ट मैसेज में मिस रोशनी सलाम एंड गुड मॉर्निंग मिस्टर हान, कैसे हो? आज मेरी बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप विश करो मुझे बर्थडे। अच्छा जी चले, आज आपकी बर्थडे है तो बिल्कुल हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया मिस रोशनी। और जी नेक्स्ट मैसेज किसका है मैसेज जी, कामयाबी जिंदगी के रास्ते कभी भी सीधे नहीं होते। कामयाबी जिंदगी के रास्ते कभी भी सीधे नहीं होते, मगर कामयाब होने के लिए उनको सीधा करना पड़ता है। आयशा फ्रॉम करक जी, बिल्कुल सही। थैंक यू आयशा, आपने ज्वाइन किया। और जी नेक्स्ट में डॉक्टर रेहम खान फ्रॉम पिशावर, तारिक सर स्पेशल सलाम टू मिस रोशनी, सुनिहान, तारहान एंड बाकी सब सिस्टर को सलाम। और ये मैसेज मेरे मैसेज प्रोग्राम में शामिल करूं। अच्छा जी चले, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। टाइम भी कम है, जस्ट 3 मिनट बाकी है। जी नेक्स्ट मैसेज किसका मैसेज है? अच्छा जी हैदर अफरीदी ने सवाल का सही जवाब दिया है और ये मैसेज हैदर अफरीदी का था, सो बिल्कुल आपका जवाब है बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू सो मच हैदर अफरीदी, आपने सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। सो बिल्कुल ये सॉन्ग आपके नाम, इंजॉय कीजिएगा जस्ट फॉर 2 मिनट्स। इस सॉन्ग के बाद जल्दी वापस आते हैं।

0: चले टाइम भी कम है, जल्दी जल्दी आपके मैसेज शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया हैदर फरीद, आपने कराची से मैसेज किया और आपका जवाब है बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। अच्छा प्रोग्राम में मैंने ये सवाल पूछा था कि वो क्या है जिसे सब दो कहते हैं और गाती भी है। सवाल का सही जवाब है डबल रोटी। ठीक है, डबल कहते हैं दो को और रोटी खाने वाली चीज है जिसको हम सब खाते हैं। सो सवाल का जवाब है डबल रोटी। ठीक है,
1: इस मोहब्बत में भला तुमसे दगा क्यों।
0: और जी नेक्स्ट मैसेज, वेलकम टू द शो तारिक, बहुत बिजी हूँ। और तारा नानी आयशा, वेलकम टू द शो एंड द शो इज वेरी वंडरफुल। मैं ग्रेट मलिका, चले थैंक यू सो मच ग्रेट मलिका, बहुत शुक्रिया आपने मैसेज किया और आपने लास्ट में मैसेज किया है, थैंक यू। नेक्स्ट तारिक भाई, ये नहीं वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता। मनाहल ने मैसेज किया है, चले चले थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मैंने जवाब बता दिया। ठीक है, जवाब है सवाल का डबल रोटी। थैंक यू, आपने मैसेज किया। ओ गॉड, यू नो ऑल थिंग्स अबाउट मी, मेक माय बी लॉज नो अबाउट माय स्टेट टू कम टू द स्टेट टू कम टू मी मेघर मलिक। अच्छा चले थैंक यू सो मच, मेरे ख्याल में आपने जल्दी में मैसेज किया है, बहुत शुक्रिया ग्रेट मलिक, आपने मैसेज किया। और दिल रुबाह से केरी के सबर ऐसे करो जैसे रोजा रखू, ये सोच करके मगरिब की अजान जरूर होगी। अच्छा जी जी, इसके अलावा नेक्स्ट मैसेज, सलाम बर्फी भाई, आवाज ओके दा। अच्छा सही, चले थैंक यू, दिल रुबाह रखने मैसेज किया है, बहुत शुक्रिया आपने मैसेज किया जी। नेक्स्ट हाफसा बेवफा, इल्मा बेवफा, मिस यू वेरी मच एंड सलाम टू ऑल। आयशा क्यों खफा है, खफा ना हुआ करें, ड्रामे देखा करें। चले थैंक यू, ग्रेट मलिक ने मैसेज किया है। मेरे हम फन फ्रॉम पेशावर तारिक सर, मेरी तरफ से मिस रोशनी को हैप्पी बर्थडे। चले आप सबका बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट शो में, बल्कि आज दोबारा 12 से 1 बजे तक प्रोग्राम में मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, आज 12 से 1 बजे तक एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। सो टेक केयर, बाय बाय, पाकिस्तान जिंदाबाद।

आवाज एक शांति खराब दी दगे पर सॉरी दगे जवाब सुन ना जमा खोक ने दे कना बखन माजरात ओके जनाब तासो खबर है तेरे बिल्कुल नेख बने गौरे और द मोर खबर की कि द मोर नज़म शुरू दे यकीनन सिसोना मोरियानी मौरी गोले मोरियानो ता समाल अखवा सलूट समाल अखवा डेरा मीना अदब और एहतरामात

0: ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।
1: उम्रा के ख्वाहिशमंद अफराद मुतवज्जे हो, मजहब की आव में मुनशियात स्मगलिंग में मुलव्वस ग्रोहों का शिकार मत बने। मुफ्त का उम्रा आपकी जिंदगी के लिए खतरे का बाइस बन सकता है। याद रखें, सऊदी अरब में मुनशियात ले जाने की सजा सिर्फ मौत है। बाखबर रहें, होशियार रहें।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी ये खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345-93-32-580।
0: तालीम एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।
3: कारोबार हो या फरमाइश, मसाइल का हल हो या सेहत का राज, बिक टू बिक हो या खबरें, रेडियो अमन लाता है आपके लिए बेहतर से बेहतरीन नशरियात। सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।

0: खजी
1: दिल के दे प्रोग्राम के तो सर तलाई से कॉल भतुर बने हां मैसेज भतुर बने हां कॉल के वाली से 0927291292 बने यानी बीटी से नंबर बने कॉल के वाली से 0927291292 और देने लगा मैसेज हां के वाले से मोबाइल के वालों से राइट या क्रिएट ऑप्शन था जब तक मैसेज लिखे अंग्रेजी तब लोड से लगे बोली के गट हरों से आर ए के आर ए के चिकर हम बोली के बिया वो वेर के स्पेस पे समाज पल्लो मुखपले इलाके नो बिया में सेंड के पॉ 85831 यानी 85 83 बांधे

अच्छा जी सही शाबियाई कहना चाहिए एंड बिंडी मो पसंदी और तोता पाता वी तोता दे पाता वी मोच की मो डिश फेवरेटी आगा नाइस सेट कवो एनी पखवो और कचर तक के बिंगन अर्बन स्टेट कवल इन मतलब पखवल ब्याज खजी देना लवा यही कहना छे खबर दिल्ली का लिए दो खजी यही कहना छे जने जोड़ को विचि चिकड़े बिना जोड़ को मैं ग्रेट मलिका हसा ही डेरा मनाना थैंक यू ग्रेट मलिका मैसेज को बोले यो जहान मनाना प्रोग्राम से मैसेज बका डेरा डेरा मनाना बिल्कुल बस बेंडी हो मोह फेवरेट थी ठीक छो डेरा मनाना छी प्रोग्राम से मैसेज को यो जहान मनाना जी देना विच सलाम सर हाउ आर यू मैं सोनी हान फ्रॉम पिशावर आई एम हैरिंग थ्रो स्ट्रीमिंग सही डेरा मनाना विच प्रोग्राम और वो द स्ट्रीमिंग दिला रही यो जहान मनाना छी प्रोग्राम से मैसेज वो पिशावर नहीं मैसेज करे डेरा मना जी देन लवा नेक्स्ट अच्छा मैसेज कम देना मैसेज कर दे हाजी सॉन्ग चुको बस दोबारा कफी हो दोस्तों दरा वर वेदला नो बिल्कुल संदर है जी दोबारा कफी हो डेरा मनना हाजी

अच्छा जी सही वैसे, लेकिन मेरा सब मर्द हजरात से अपील है कि इस गर्मी में लड़कियों जो कुकिंग करती हैं तो बेचारियों के कभी हाथ जल जाते हैं तो कभी गर्मी से उनके चेहरे जल जाते हैं, तो खाने में कमी बेशी रहे तो आप लोग गुस्सा ना किया करें। सोनिहान मैसेज कर रहे हैं डेरा मनाना, थैंक यू, बिल्कुल सही खबर है, दो खामखा इंसान देखे लसड़ी ना रोटी वसफी सलन वसफी नो दपगेर सी ठीक सो। रोशान मैसेज कर दे और वैसे अरे वेलकम तारा खानो थैंक्स मेरा बेस्ट फ्रेंड ग्रेट मलिक का ओके मेरे सुपर डुपर अंकल बेस्ट ऑफ लक डेरा मनाना, थैंक यू सो मच मैसेज के वाले। रोशिहान मैसेज कर रहे, रोशिहान मदरसे में मेरे लिए स्पेशल दुआ करना तारा सोनिया को वेलकम मैग्रेड मलिका डेरा मनाना। अच्छा तारा नानी को वेलकम मैग्रेड मलिका योजहान मनाना। और तारा हान मैसेज कर दे आपके शो टाइम में किसी को भी बर्दाश्त नहीं करती, शो में जरूर सुनती हूँ या तो फिर या मेहमान आ जाते शो के टाइम। अच्छा सही थे डेरा मनाना खजी यो जहान मना तरहान दौरा शो बने तो शुगान है और वही नो बस मेहमान बहा ख्याल होते खैर दे मतलब रेडियो हम थर लगवा और मतलब मेहमान चुकम दे गया था मतलब बंदोबस्त करो ठीक सो। सो बिल्कुल टाइम खत्म छुए इनशाला दरसरा की जो ब्याह मुलाकात कला में मुलाकात दरसरा की नेक्स्ट शो के बाद इनशाला इंटरटेनमेंट शो के बाद नेक्स्ट शो के दरसरा की मुलाकात खजी बिल्कुल लंदे संडे नो बिल्कुल नेक्स्ट शो के बाद दरसरा की मुलाकात मो बिल्कुल शुगाने शुकम दिया मंगल पौर रजवी दस पे दस न बारह बजे परे बुध पौर रजवी दस पे दस न बारह बजे परे इतवार पौर रजवी सहार दस न सहार आठ न नौ बजे परे और देने लवा नौ टाइम बने हैं बारह न एक बजे परे हैं दे टाइम बने माजीगर पांच न छह बजे परे हाँ कल कल भी सो बिल्कुल टाइम तो खत्म छुए इंशाल्लाह नेक्स्ट शो के बाद दरसर की मुलाकात चलो डेरा मनाना। और तरहान भी मैसेज करे दे खजी तरहान अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे सलामत रखे डेरा मनाना थैंक यू मैसेज कर लिया जहां मैंने ना रोशिहान भी मैसेज कर दे वैसे जरूर करूंगी ग्रेट मलिका मैं दुआ सब के लिए करती हूँ सुपर डुपर अंकल को भी सही था थैंक यू सो मच मैसेज के वाले जहान बनाना टाइम तो खत्म हुए इंशाल्लाह नेक्स्ट शो के बाद सर की मुलाकात ठोलो यू जहान बनाना चाहे प्रोग्राम से मैसेज हो कहो चाहे प्रोग्राम से कॉल हो कहो दागे ठोलो डेरा मनाना और चाहे हम सही सर प्रोग्राम और दागे हम डेरा मनाना की भी नो इंशाल्लाह नेक्स्ट शो के बाद सर की मुलाकात तरह पर दुआ गानों की आसत है और खजी सो बिल्कुल वाड़ बदरना इजाजत माँ बखल दुआ गानों की आसत है और इंशाल्लाह नेक्स्ट शो के बाद सर की मुलाकात तरह पर दुआ गानों की आसत है दो लो यला बमान।

का वेलकम टू द शो, तो बहुत जबरदस्त एंड बेस्ट है। मनाना मनाना मनाना वैसे अस्सलाम वालेकुम मेहरबानी मेरे लिए आसे मजार मोमना मुस्तासिन की आवाज में ये गाना चलाओ। गाने की बोल है तेरे वो प्यार नवाज से ढेर जुटा मना कोशिश किधर तपले की साइड हो। फर्स्ट टाइम मैं जरूर इधर तपले की साइड हो। मुझे पाकिस्तान

0: शादी
1: जिंग के प्रोग्राम शुरू छ से बनु मुंडा नयो दाता पे एमएसडी खाना अच्छा अस्सलाम वालेकुम से बनु नयो ओ दे बिलाल वो मंटानो लठा पे वाला गो परने अच्छा साइड डेर जो तमन्ना यो जान वाला खुश खुश की दरसा प्ले की साइड और डेर जो तमन्ना प्लीज ये अच्छा ये पाकिस्तानी सॉन्ग है साइड डेर जो तमन्ना ना बच्चे में क्यूट खान है मेजी भाई नन खो यार तफले का दखो बुना दुनिया लग रंगीना खदा ऑल फ्रेंड को दिल अस्सलाम वालेकुम सलाम डेर जो तमन्ना टोल लिसन तेरे सलाम ने चिकन निकन आखन देख पने वरस दल वरस
0: हां जाओ
1: ओ नो सुमरा लिसनर समाइंदी प्रोग्राम से कल हां रुद्री में प्रोग्राम से देखला की दायरे से कि मां सॉन्ग भी खा करो ना गोड़े साइदो।

32 52 65 340 पता याद साथे पिशावर हेल्थ मेडिकल सेंटर मलिक सिंजीत मखामख सिविक प्लाजा जेल चौक खरग।

खुजफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम, खुजफा कंपनी शिफा फेस वाश, खुजफा कंपनी शिफा तेल और शैम्पू यकीन ची डेर जबरदस्त और बेहतरीन प्रोडक्ट थी, लाजवाब प्रोडक्ट थी, तुसे दे मखे दे सुमरा मसाले दी का तुसे खुजफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल वाल गुड हिस्सा है। खुजफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम दुने दुगीना डबीना तरशेरी दिमाग गुंजा दे मख्तुर वर्गलों तोरे हल्के शर्तिया खत्म कवि उदा क्रीम और फेस वाश तुस्ता पमनी बेग गारंटाई सरा मिला जी। खुजफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम सरा खुजफा कंपनी शिफा फेस वाश इस्तेमाल के विटामिन सी फेस वाश थी यकीन ची द्वारा तुसे इस्तेमाल के खुजफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम और फेस वाश तुसे तो डेरा जर फायदा देर की। दिन इलावा कचरे मिशप तेल बुंदे खबर हो कि नो तेल डेर जबरदस्त और बेहतरीन तेल दी दिसार विश्तुन खतल बंदवी दिसार विश्तुन अक्षली कवि कचरे वक्त नए गंजाए नवे ओस उस गंजाई शवाए वे मुसलसल इस्तेमाल द खुजफा कंपनी शिफा तेल जरा द पत्तों पर सारो नवी तजा विश्तुन हर पैदो की। दिन इलावा का विश्तुन दे विश्दीजीना विश्तुन दे वजदवी हाँ विश्तुन दे गणवी मजबूत हवी खुशली कवि चमकदार कवि है। विरसरा कमिश पर तेल बुंदे खबर है कि तेल बुंदे खुमे दर्द वगड़े शैम्पू बुंदे नो खुजफा कंपनी शिफा शैम्पू चे कीमत हो पदा बुंदे ओख खबर है कि खुवा बला अहम खबर दुल तदा दर्द कच कचेरे मो बदन दर्दी नवी अपशे दे लोस तेमले दे अडी की चकीम जी की से दर्दी नवी नो बिल्कुल अगा जिकाई पे घोड़ा व्यस्त है अगा दर्दी न मुखौर कीजिए। देना इलावा बला खबर वो कह दे शैम्पू वाला छे शैम्पू डेरे खुशबूदार शैम्पू रोगली दी खुजफा कंपनी शिफा शैम्पू सारीना पे भी है विश्ता पे भी है विश्तों मखलूसावी हाँ खुशली कवि हाँ चमकदार कवि हाँ बदान पे भी बदन नो मुडेरा जबरदस्त खुशल्य खुशबू हाँ दरिमी नो दे खुशबू देपुरा और दे विश्तु ने सफयई देपुरा दे बदन सफयई देपुरा खुजफा कंपनी शिफा शैम्पू इस्तेमाल कीजिए। दिन इलावा दाओ तुस्त चेरता मिला विशी देख एड्रेसिना देरता वशाए दिकंदुरूनी देरता वशाए जो पकीम किम दिकंदुर सरा दा दे शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोडक्ट मिला विजी दिकंदुरू ने पतराफ बुंदे द्री मीच किम किम दिकंदुर सरा शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोडक्ट अवेलेबल दी नो पकारक से गुलाजी मार्केट से खान बहादुर सरा मिला विजी कमर्शल प्लाजा से अब्दुलरहमान सरा मिला विजी उमरदीन प्लाजा से अवलजान साफी सरा मिला विजी 22 ग्रेड सरा मिला विजी उमरदीन प्लाजा से रहमानुल्लाह सरा मिला विजी नवाब बेकरी जेल चौक मिला विजी अदिल बेकरी पर जेल चौक से नवाब किड गैलरी जेल चौक से सिटी स्टोर जेल चौक से मिला विजी सिटी सुपर मार्केट जेल चौक से सारा मिला विजी खुजफा कंपनी शिफा टूल प्रोडक्ट अयूब प्लाजा से मिला विजी पर जेल चौक से पमीटा खेल से अली कॉस्मेटिक्स एंड गारमेंट सरा पमीटा खेल से आफ्ताब कॉस्मेटिक्स फैंसी कॉस्मेटिक्स मीठा खेल से तुसे तमिला विदायशी दिन इलावा पमीटा खेल से दुबई कॉस्मेटिक्स सरा हाँ देर तमिला विदायशी नो साबिराबाद करक से तुसे तमिला विदायशी दे शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोडक्ट जवाद कॉस्मेटिक्स सरा और देना इलावा नियाज स्टाफ से अलकेसर सुपर स्टोर सरा देर तमिला विदायशी टेरी बाजूर से एहसान कॉस्मेटिक्स सरा शाह मुनीर शॉपिंग सेंटर सरा हाँ देर तमिला विदायशी और बल जलाल शॉपिंग सेंटर दे दल तमिला विदायशी उरुसा शॉपिंग सेंटर अंबेरी कलेश तमिला विदायशी साकिब जनरल स्टोर मक्का होटल अंबेरी कलाशे साकिब जनरल स्टोर सरादर तमिला विदायशी देना इलावा तख्ते नसरती से फहीम होलसेलर सरादर तमिला विदायशी तख्ते नसरती से लतीफ शॉपिंग सेंटर सरादर तमिला विदायशी हुसैन शॉपिंग सेंटर तख्ते नसरती बेनजीर पिको तख्ते नसरती जाकिर बेकरी हामिदान चौक करक जाकिर बेकरी हामिदान चौक करक नासिर इकबाल कॉस्मेटिक्स हामिदान चौक करक नसीब कॉस्मेटिक्स हामिदान चौक करक महमूद कॉस्मेटिक्स हामिदान चौक करक और करीब कॉस्मेटिक्स हामिदान चौक करक गोहर कॉस्मेटिक्स हामिदान चौक करक से देता शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान टोल प्रोडक्ट मिला विदायशी दिन इलावा लतमर से तुसिता साजिद कॉस्मेटिक इनाम एंड अफनान कॉस्मेटिक्स ममन होलसेल डीलर सरा देता मिला विदायशी तारिक कॉस्मेटिक्स।

वेलकम बैक, यू आर यूज़ अलीबिया पर प्रोग्राम शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान। बिल्कुल जी, आ तुसे खबर अतर दखल मेजबान आर चे शाहिद खान उर्वे कचेरे दे दिमाग रंग तुर पमख ते दुने दुगीना डबीना तरसरी दिमाग दे गंजावी दे बिस्तर के दुंदे दे तुरे हाल के दिमाग रंग स्पिनवल गोड़े नुखुजिफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम पे इस्तेमाल कर दशवेटे मुखुजिफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम लगावा सबुए पखुजिफा कंपनी शिफा विटामिन सी फेस वॉश पर नवीनता इंशाल्लाह पपिंजा वरेजे ज्यूते ना ज्यूते वो वरेजे शे उदे तो मख रंग रूरी दे तू दे मखना दुने दुगीना डबीना तारसेरी उरक्षे दिसार दे विष्टुने मसला दे दो दिसार ना दे विष्टुने

0: Radio Ama Network, News and Information Station. You are listening Radio Ama Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: कल की यादें आज के लम्हे और आने वाले कल की उम्मीद सबको जोड़ी एक आवाज़ रेडियो अमन 88.4 तरफ हर वक्त आपके साथ।

0: Τώρα είμαστε με ζητάρ, το οποίο έγινε πότε σαν πάρσι, δεν τόσα έχω χωστηθεί.
1: Για να τι σε τάρκα να πας σαν πάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ, έχω χωστηθεί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ, μάρα είμαι ζητή μόχο κορτά, national or multinational, καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίσε δασταράγγε σαρά προβρή.
1: Δελκόλ τάρκα να τα γιλεύε χάρβα τε μούταχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοήβη σε ρικρέτη, ω τον κούρβαλα να χωσούλτη.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरावरों उदार तो ये या चेप इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सा पर युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सारा खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सा पर ही पवा लोसीना नखर पवी
0: शाम इस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाई दार तो ये दाव मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाव तो दफा बने বলছে আন্দ্রনলা কি গেট জানছে বেগালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ এর সাহেব স্যার অর্ডার তে মিলা বেশি
2: আপকা আপনা রেডিও রেডিও
1: तारखाना दस ख्वाजे ख्वाजे सांदर है दिलागा वाली दी दस शाही वर्वे
0: एमएस जी दाखो मेरे डियो पो बाजूर से उपस्य दो नो दा बेंड में तो वो 88.4 वर बंदे रोग लाल
1: तारखाना दा 88.4 सशाई दी
0: एमएस जी 88.4 में चेकला वाला गुवान नो दाहो करक रेडियो और बंदे रोगला दाहो दे करक रेडियो फ्रीक्वेंसी दो 88.4
3: हर यो अरमान बजी पूरा कम सकल खार तलाड़म ताल पपंगड़ी रोड़म
1: ब्याहवार साचे बाजोरत अलोची चेवारो डियो जुन ता जहां ओखला चिदा से खोजा खोजा परुगा

0: बिल्कुल
1: दस कीड़े से खाम खाद वाई दाई
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: लड़ा सर से अल्लाह शाह ये प्रोग्राम से सरो सर शामिल है
0: बाजी सिर्फ स्टोर दे दिया दस पर मैं खा रहा हूं
1: हम मना देखे शुक्रिया देखी थी मिर्ज ईद के लिए
0: मना
1: निका इन सला निका मोर वंदा भी निका होती सुबह विश्व प्रोग्राम ने के दा हम हां पार्टिसिपेट सर की
0: बिल्कुल बिल्कुल हम हां
1: नला साइड ढेर जो तो मन काल का वाले यो जहान मना
0: बाजी जसु का सा बस जो जा सलाम वो तो
1: जी जी जी
0: बा शक्ति हां नमाज पे अब ने के
1: शकील अला बिल्कुल बिल्कुल
0: उधर ने इस्लाम खोल खोल मैं बोल ना वाला
1: जहान मन जुम्मन को निकल देर
0: तुम्हें
1: यो जहान मन

0: परसों गिरो मया नाप दबी खोश पो के साले दले दीना
1: पनि मश्प के चगो श्वा कुम सफर तबल को वरिया छवि दीना
0: जये दजर बाया खलम